0: उन्होंने खंडन किया था, माननीय नड्डा जी ने एज ए लीडर ऑफ दी राज्यसभा वो खंडन किया था राहुल गांधी जी को, जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इसके बारे में बहुत दुख व्यक्त किया, अभी उनको याद आ गया है। लेकिन इसमें बीजेपी का, बीजेपी कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं है। ये स्पष्ट है कि उधर जो हुआ है हमको कोई इसका संबंध नहीं है, कोई इसका ताल्लुका नहीं है, फिर भी राहुल गांधी ये ड्रामा करते रहते हैं।
1: आपने शुद्धिकरण किस काम का किया था भाई? क्या शुद्ध कर रहे थे आप? आपको खड़गे जी का चरण रखने से, खड़गे जी के कदम रखने से आपको वहां अशुद्धि दिखाई दे रही थी, तो आप शुद्ध करने चल दिए थे। तो क्या सवाल उठा दिया राहुल गांधी ने? और क्या बोल रहे थे आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं? क्या बोला आपके प्रदेश अध्यक्ष ने? पार्लियामेंट में खड़े होके खड़गे जी ने अपने बारे में साथ जो कुछ हुआ उस व्यवहार को बताया। नड्डा जी ने उस पर माफी भी मांगी कि अगर ये ऐसा हुआ, लेकिन FIR नहीं कराई। FIR क्यों नहीं कराई आपने? और ये इतने दम्भ में ना रहो, अजर और अमर नहीं हो गए हो? कल को सब इलाज हो जाएगा तुम्हारा भी। कभी गलत फहमी में हो गए, तुम ही परमानेंट रहने वाले हो।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Good morning and welcome. The Prime Minister hailing the most recent GDP numbers that's coming in right now in a video. Let's take a look at that. He's posted about this on Instagram. 7.8% growth, hailing those phenomenal growth numbers, particularly currently in the overall global context, and even stronger confidence, saying that India's exemplary GDP growth during Q1 is a Herculean feat, and the collective strength of our people have ensured that India has delivered such growth despite oil price shocks and supply chain issues. That's in the midst of global uncertainties. Doomsayers were doomed and India bloomed yet again.
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई. 7.8% ग्रोथ. देश खुशियों से भर गया है. लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए. एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है. दुनिया युद्ध में डूबी हुई है. चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है. विश्व संकटों से घिरा हुआ है. सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है. 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है. उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है. दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं. इन सारी चीजों को पार कर

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Meanwhile, India's economic growth has become the latest political battleground. This after GDP growth surged to 7.8% in the first quarter of the 2026-27 financial year. In a video released on Instagram, Prime Minister Modi hailed India's 7.8% GDP growth, calling the latest economic numbers a sign of stronger confidence despite global headwinds. Prime Minister Modi hit out at Jhoot Ki Goonj Brigade and accused them of spreading misinformation. Prime Minister Modi claimed that despite this Herculean feat, there are some within the country who are mired in the abyss of pessimism, echoing falsehoods and spreading despair. On the other hand, Congress Party has challenged the numbers, arguing that GDP growth does not necessarily translate into jobs, higher wages or greater prosperity for ordinary Indians. Calling the GDP numbers a distorted picture, Congress has also raised concerns over wages, the falling rupee and paper leaks. BJP has hit back, accusing Rahul Gandhi and the Congress of painting a misleading picture of the economy while arguing that India remains a global bright spot and in growing and continues to grow despite external shocks. It has also sought Rahul Gandhi's apology over the dead economy remark.
1: Deshwasiyon ko bahut bahut badhai. 7.8% growth. Desh khushiyon se bhar gaya hai. Lekin deshwasiyon ko main badhai deta hoon unke sankalp shakti ke liye, unke purushart ke liye. एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है. दुनिया युद्ध में डूबी हुई है. चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है. विश्व संकटों से घिरा हुआ है. सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है. 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है. उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है. दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं. इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है. हमें इस गति को बनाए रखना है. हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है. स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल. विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए. शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए. मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए. हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे. हमारी युवा पीढ़ी के सपनों को हम आज अपने परिश्रम से साकार करके रहेंगे. और इसलिए आइए देशवासियों, हम पुरुषार्थ में कोई कमी न रखें. हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति आज एकजुट होकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है. आइए खुशियां भी मनाइए, संकल्प कीजिए और संकल्प को सिद्ध करने के लिए मेरे साथ चल पड़िए. बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई.
2: Prime Minister Modi has given us the destination for 2047, which is Viksit Bharat. If every quarter Indians are able to lift the Indian economy like this, I am sure clearly by 2047 the goal will be achieved. And in this, the reforms which have been undertaken by the Prime Minister across various departments and ministries, and also in the financial sector, the way in which digitalization has helped small, micro, medium businesses to be able to access the global markets. Because of the deep penetration of the UPI, the NPCI, the QR codes and everything else, the Indian economy's robustness has come out.
3: We are very happy and we are very, very optimistic that this growth is sustainable. It will continue to grow. India will continue to grow because of the diverse remarkable reforms which have been taken place very recently in all sectors.
4: Despite global energy crisis, despite global headwinds, India is the only economy जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है और जहां ग्रोथ भी हो रही है, जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं. इसीलिए शायद से राहुल गांधी और उनका ग्लोबल इकोसिस्टम, जो भारत को एक कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में देखना चाहता था, आज वो निराश है. ये पूरे निराशावादी इकोसिस्टम को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में इंडियन इकॉनमी ने, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने, इंडियन लेबरर्स ने भारत की इकॉनमी को वापस से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी विद 7.8% ग्रोथ रेट बनाया है.
5: Rupee today is almost close to 100. So that's one indicator to me. Okay. Two, what kind of growth is that? Is that growth for very few or growth for people of India? Is it equitable? Does it percolate down? Or we have created few more billionaires? It is all about decoration. It's all about fake ideas. You got to face the reality. Saying, fine, we have 7.8% growth, but that growth has not benefited large number of people. Accept it. Work on it.
6: सबसे बड़ी बात यह कि जो कर्ज का बोझ मोदी जी ने लाद दिया, अपने 13 प्रधानमंत्री उनसे पहले जो है उन्होंने इतना कर्ज नहीं लिया जितना अकेले मोदी जी ने ले लिया, इन सब बातों का जवाब कौन देगा? बेस ईयर बदलकर एक नंबर बड़ा आना और उसकी बाबत करना एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि मोदी जी को इकोनॉमी की कोई समझ नहीं, मैं उनको समझाना चाहती हूँ यहाँ से. जिस विकसित भारत की आप 2047 तक बात करते हैं, अगले 21 साल आपको 12% जीडीपी ग्रोथ चाहिए. अभी भी आप एनुअल जीडीपी ग्रोथ 7% क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं. ये असलियत है. इधर उधर की बातें मत करिए, क्वार्टरली नंबर देखकर कूदिए मत.
7: जमीन पर अगर आप किसी से बात करो तो आप सामान्य जन तो छोड़ दीजिए, कोठियों में रहने वाले, रोज करोड़ रुपया खर्च करने वाले भी कह रहे हैं कि हालत खराब है. तो अब या तो जनता को नहीं मालूम है क्या हो रहा है, या सरकार ऐसी दुनिया में जी रही है जो वास्तविकता में नहीं है. ये मुझे दो कनेक्शंस साथ होते हुए दिख नहीं रहे.
8: चुनिंदा लोगों की जेब में पैसा है, बाकी हमारे देश के आम लोगों की जेब में पैसा खाली होते जा रहे हैं. अब पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात रखो, आप अपने खुद हालत देख सकते हो. अगर देश के सारे कुछ आपके कहने के मुताबिक सब अच्छे भाले चल रहे हैं, इतने सारे धन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आपको पता है? हो सकता जी बजरंग जी आपको धन ज़्यादा दे रहे हैं, हो सकता, लेकिन आम लोगों के लिए ये धन की कोई इस्तेमाल नहीं होते हैं.
0: You've talked about manipulation, how these numbers are being manipulated and how the ground reality is completely different. What are these factors that are actually leading to these numbers rising despite your party claiming that the people are and the Aam Aadmi is struggling?
9: Exactly, that's a good question. You have to understand that big corporate, India's wealth is been handed over to India's growth story is only believes depends upon Adani's growth story. And Ambani's growth story and Vedanta's growth story. If their wealth is increasing, the GDP numbers multiply that into that growth of India. That is not growth of India. Youngsters jobs is the growth of India. How many people are lives are better in is growth of India? It is not the balance sheet of Mr. Adani and Ambani which is going to make us India proud.
0: And well, just a few weeks ago, Rahul Gandhi once again declared the Indian economy dead and said that India would soon face an economic tsunami. Listen in to what Rahul Gandhi had said in June this year.
10: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है. उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जर्वर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है. तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने. ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी. ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता.
0: And the other story that is making headlines, two Malayali women who left Kerala to build a life in California are unfortunately dead now. Their common friend who has been arrested in connection with these deaths. The police are still investigating the exact sequence of events and the motive as their families wait for answers. Efforts are also underway to bring the women's mortal remains back to Kerala, with Union Minister Suresh Gopi coordinating with the Indian consulate. We're getting you all the details of this case in this report.
11: Two women, Anjana and Anne, left Kerala for California, hoping to build a better future, allegedly killed by their friend. But they will never make it back home. Today, two families are waiting for their daughters, heartbroken and searching for answers. In Thiruvananthapuram, Anne Mary Matthews' parents are devastated. Anne moved to the US with her husband 5 years ago. She had recently secured a work permit and started working as a teacher. Police say 35-year-old Anjana Hari was killed in a hit-and-run in Malpitas on August 28. A blue SUV allegedly rammed into her before fleeing. Police later found the damaged vehicle and was found dead inside her San Jose home. Relatives allege she had been stabbed. Anila, a common friend of the two women from Kottayam, has been arrested in connection with the deaths. Two women, two families, two lives cut tragically short. 35-year-old Anjana Hari from Thrissur was a school teacher and a wife and a mother to a 6-year-old daughter. 40-year-old Anne Mary Matthew from Thiruvananthapuram was a computer teacher, a wife and a mother of two. Now efforts are on to bring the bodies back home. Union Minister Suresh Gopi says he has spoken to the Indian Consul General in San Francisco. But with the murder investigation underway, repatriation could take time. Two women who left home for a better future. Now their families are waiting to bring them home. With Shibimol KG, Bureau Report, India Today.
0: Time now for a short commercial break. On the other side is our special segment, Soar South, where you'll get to watch all that is making news down south. Do stay tuned to India Today.

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: once again, and thank you for tuning into Lunch Break on India Today. I'm Suesha Sawant. We now cut across to this live news conference by the BJP. Let's listen in.
1: मैंने कहा चिंता मत करिए, हम लोग पावर में आने वाले हैं, हम लोग ठीक करेंगे. तो फ्रॉम फ्रेजाइल 5 to 7.8%. इसीलिए मैंने तुलना की कि दुनिया में तनाव है, दुनिया में युद्ध है, सप्लाई चेन डिसरप्टेड है, फिर भी भारत का ये 7.8% ग्रोथ रेट कितना. ये होता है जब देश में एक स्टेबल लीडरशिप होती है. ये तब होता है जब देश में एक ऐसे नेता होते हैं जो चुनौतियों को अवसर में बदलते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी हैं. ये तब होता है जब उनकी अगुवाई में पूरा देश मिलकर खड़ा होता है. तो जैसा आपने देखा होगा, क्या मैन्युफैक्चरिंग, क्या ट्रेड, क्या कंस्ट्रक्शन, क्या सर्विस सेक्टर, इन सबों ने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है और जो नीतियां बनाई गई हैं हमारी सरकार के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारी सरकार ने जो धन का उपार्जन करते हैं उनका गाली गलौज नहीं किया, उनसे कहा काम करो और देश को आगे बढ़ाओ. ये उसका नतीजा है. लघु उद्योग, बड़े उद्योग, मझोले उद्योग, बाकी जो हमारे कर्मयोगी हैं, कर्मकार हैं, इन सबों को इंस्पायर करना, ये बहुत जरूरी मुझे लगा कि आज के दिन बताना जरूरी है. और ये भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है. इंडिया नाउ इज इमर्जिंग एज अ रियल मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विच कैन एक्सेल इवन इन द केस ऑफ शॉक्स, अनसर्टेनिटी एंड कंप्लीट पैरालाइजिंग वॉर सिचुएशंस इन द ग्लोब. इस बात को समझना बहुत जरूरी है. भारत की अर्थव्यवस्था आंतरिक रूप से बहुत मजबूत है. तो जहां मुझे इस बात का संतोष है, आज का अवसर है कुछ राहुल गांधी से हिसाब किताब करने का. उनकी टिप्पणियों को अभी हम दिखाएंगे. उसके पहले आपको एक हम बात कहना चाहते हैं. क्या देश के मनोबल को कमजोर करने का ठेका राहुल गांधी ले लिया है क्या? हैज राहुल गांधी टेकन ए कॉन्ट्रैक्ट टू कॉम्प्रोमाइज वीकन द मोरल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया? भारत की छवि को कमजोर करने का उन्होंने अपना पट्टा बना लिया है क्या? क्या क्या बोलते हैं वो और किस सफाई से झूठ बोलते हैं वो? आज इसके कुछ हम प्रमाण उनके शब्दों में दिखाना चाहते हैं. जरा सुनिए आप. प्लीज गो अहेड.
2: लाइट्स ऑफ.
3: लुक एट दिस. एवरीबॉडी नोज दिस एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर. एवरीबॉडी नोज दैट द इंडियन इकॉनमी इज अ डेड इकॉनमी. आई एम ग्लैड दैट.
2: नेक्स्ट.
4: एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ गई है, क्राइसिस बढ़ गई है. तुमने की शुरुआत देखी है, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी.
1: हो गया
2: जी.
1: क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है भारत की आर्थिक स्थितियों के महान जानकार राहुल गांधी ने क्या क्या ज्ञान दिया है पिछले कई महीनों में. इंडियन इकोनॉमी विल बी ए डेड इकॉनमी, ए बिग आर्थिक सुनामी इज कमिंग. राहुल गांधी जी, आपके शब्दों को आज हमने रख दिया और 7.8% ग्रोथ रेट सामने में है. कुछ शर्म है आप में क्या? मैं तो हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते. राहुल गांधी चीट स्पीड पर चलते हैं. कोई लिख के दे दिया बोल देते हैं इन इकोनॉमी द डेड इकोनॉमी. और मैं और आज जिम्मेवारी के साथ एक बात और कहूंगा, भले वो एलओपी हैं लेकिन राहुल गांधी को देश की आर्थिक और अर्थव्यवस्था की कोई जानकारी नहीं है. Mr. Rahul Gandhi is bereft of any understanding of economic management and economic development. तो कोई गुल्ली कह देता है तो बोल देते हैं भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, ऐसी मार पड़ेगी कि देखिएगा आप. मैं तो उन शब्दों को कह नहीं सकता ना. और आर्थिक सुनामी आने वाली है. राहुल गांधी कुछ मतलब समझते हैं आप? एलओपी है ना. इन शब्दों के बोलने से इंटरनेशनल इंपैक्ट होता है ना. लेकिन शायद दुनिया भी समझ गई है कि राहुल गांधी हल्का बोलते हैं, उनको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन एक देश उनकी सारी टिप्पणी से बहुत प्रभावित रहता है. उस देश का नाम है पाकिस्तान, जो उनके सारे इस तरह के कमेंट को उठाकर दिखाता है कि एलओपी इज स्पीकिंग अबाउट द शैबी स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. फिर कहूंगा, राहुल गांधी को शर्म है आपको? आपको मोदी जी नहीं चाहिए, आपको बीजेपी से नफरत है, आप रोज आरएसएस को गाली पढ़ते हैं, तो क्या मोदी जी से नफरत, बीजेपी आरएसएस को गाली करते करते आप देश को भी गाली दे रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी इज ए डेड इकोनॉमी, ये उनके शब्द आपने सुने, सुनामी आने वाली है. तो आप भारत को दूस एक प्रकार से कलंकित कर रहे हैं. राहुल गांधी जी आपके इस झूठ के आधार पर भारत को कलंकित करने के कुत्सित प्रयास की भारतीय जनता पार्टी भर्त्सना करती है. द बीजेपी कंडेम्स आउटराइट द इरेस्पॉन्सिबल फॉल्स बेसलेस एंड मिसचीवियस कंटेंशन ऑफ राहुल गांधी. इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी एंड अ बिग आर्थिक सुनामी इज गोइंग टू कम. सच्चाई सामने आ गई कि 7.8% ग्रोथ रेट वर्ल्ड का हाईएस्ट. तो वैसे राहुल गांधी समझेंगे तो नहीं, आप जानते हैं. तो देश उनका जवाब देगा, मैं हमेशा मानता हूं.
0: And that is BJP mounting the attack on Rahul Gandhi over the comment that he made on the Indian economy. On that note, we slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Stay tuned to India Today.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: आरोपी है जो वहां पर खाना परोसने का काम करता है, वो वहीं से जा रहा था तो उसने जो शिकायत करता है उसके हाथ को और पीठ के ऊपर हाथ फहराया। इसके कारण जो शिकायत करता है उसके मन में लज्जा उत्पन्न हुई, इसका विनय भंग का गुना उस दिन दाखिल है 26 अगस्त को। 26 अगस्त को ही आरोपी को हमने अरेस्ट किया है।
1: मामा मुलींच्या कुठे पण अंगाला हात लावत होता।
2: काय त्रास दिला तो?
1: मुलींच्या अंगाला हात लावत होता।
2: तुला काय त्रास दिला होता त्याने?
1: हाताला इथे असं केलं त्याने।
2: काय बोलला?
1: आणि त्याला मी बोलली की मामा हात नको लावू, मी पोलीस केस करेन। तो बोलला हा का, तो वरती निघून गेला डस्टबिन ठेवायला आणि मुलींच्या कमरेला पण धरलं होतं।
2: कधीपासून काम असा त्रास तुम्हाला देत चालू
1: होतो? सर एक महिना झाला।
2: तुम्ही हे प्रकार कधी इथल्या मॅडमांना वॉर्डनला कधी सांगितलं नाही का?
1: मॅडमांना सांगितलं पण अधीक्षिका मॅडमने आमचं तर दुर्लक्ष केलं।
2: याबद्दल पण दुसऱ्या मुलींना त्रास द्यायचा?
1: हो।
3: And Divesh Singh joins me on the phone line on this story. Divesh, what more can you tell us about this case? Because it is a very, very serious question. Somebody who was arrested in a POXO case, being given the same kind of job in the same kind of school where very, very vulnerable young girls from tribal communities are staying. They're not just studying there, they're living there. Divesh.
4: Well, exactly, Anisha. This is a very shocking case which has come to light. And India Today went to the spot, spoke to the victims, spoke to officials, and also confronted the ITDP, the Integrated Adivasi Tribal Development Project officials, who reinstated this accused, Ganpat Gavli, despite he being arrested, despite he being booked for a heinous crime like molesting a minor at another tribal boarding school. He was again reinstated despite serving time behind bars. He was again reinstated, again posted at a tribal boarding school. And this time, he did not just stop at one victim, but he has molested 22 such victims who are all minors, cutting from the standard 6th to standard 10th. These victims narrated their ordeal to the superintendent. Initially, the superintendent did not listen to them and also did not hear to their complaints, after which they approached the headmaster. And once the headmaster came to know, he called up the tribal development officials, called up the police, and then police rounded up this accused, Ganpat Gavli. He has been arrested and now put behind bars. But it again points out to the fact that he had done the same thing in 2024, but after that, again, he was reinstated and again posted at a school where there were minor female students and is molested or assaulted 22 of them.
3: All right. Thank you very much for that, Divesh Singh, bringing us this very shocking story from Maharashtra. Breaking news now coming in on the AI video war ahead of the UP elections. Remember, the state goes to polls next year, that is 2027. And Akhilesh Yadav and Yogi Adityanath AI videos have been played at the SP headquarters. Akhilesh Yadav has played AI video of Yogi smoking while and UP Chief Minister Yogi Adityanath shown smoking a chillum in this AI video. Vanaspati badnam hui bar at Yogi Adityanath, and after an AI video about Akhilesh had surfaced where Akhilesh was shown with rioters in an AI video. So clearly both the BJP and the SP in an AI video war. Let's take a look at what Akhilesh Yadav has said.
5: AI jo tune hai, AI ka jo एआई का जो काम है, नई पीढ़ी के लोग बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक गाना हमारे लिए बनाया गया, तो हमने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं से मैंने कहा कि आप मत बनाना इस तरह का, कोई मत बनाना। कुछ लाइनें हमने पढ़ दी, वो वायरल हो गई। लेकिन जब देखा कि एक हैंडल, दो हैंडल, तीन हैंडल से और लगातार सरकार के लोग मिलकर के उनको और बना रहे हैं, तो किसी ने हमें एक बहुत अच्छा वीडियो एआई का बना करके भेजा है। पहले हम अपना दिखाते हैं जो हमारे लिए बनाया उन्होंने, जिससे उनका जब वो देखें खुद का तो बुरा ना लगे उन्हें। ये बच्चों के खेल ना खेले सरकार, सरकार बचपना ना करे। अगर उन्होंने एआई से वीडियो हमारा बनाया है तो हमारा भी 20 सेकंड चला दो और फिर उनका हम चला दें। आप अपना दिखाइए, अब दूसरा नया जो एआई से किसी ने बना करके भेजा है वो भी देखिए। अब आप

0: सबसे बड़ी बात यह कि जो कर्ज का बोझ मोदी जी ने लाद दिया, अपने 13 प्रधानमंत्री उनसे पहले जो है उतना उन्होंने इतना कर्ज नहीं लिया जितना अकेले मोदी जी ने ले लिया, इन सब बातों का जवाब कौन देगा? बेस ईयर बदलकर एक नंबर बड़ा आना और उसकी बाबत करना एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि मोदी जी को इकोनॉमी की कोई समझ नहीं, मैं उनको समझाना चाहती हूँ यहाँ से, जिस विकसित भारत की आप 2047 तक बात करते हैं, अगले 21 साल आपको 12% जीडीपी ग्रोथ चाहिए, अभी भी आप एनुअल जीडीपी ग्रोथ 7% क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ये असलियत है। इधर उधर की बातें मत करिए, क्वार्टरली नंबर देखकर कूदिए मत।
1: चुनिंदा लोगों की जेब में पैसा है, बाकी हमारे देश के आम लोगों की जेब में पैसा खाली होते जा रहे हैं। अब पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात रखो, आप अपने खुद हालात देख सकते हो। अगर देश के सारे कुछ आपके कहने के मुताबिक सब अच्छे भले चल रहे हैं, इतने सारे धन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आपको पता है, हो सकता जी बजरंग जी आपको धन ज़्यादा दे रहे हैं, हो सकता, लेकिन आम लोगों के लिए ये धन की कोई इस्तेमाल नहीं होते हैं।

0: जो सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: You are watching India Today.
2: Welcome back to the Indian Today newsroom, and now we are taking you to Maharashtra with a story that has left all of us here shell-shocked. A school which is supposed to be an area of safety, a school where we are supposed to leave our young children in the anticipation and the hope that they are going to remain safe and secure. Unfortunately, that's not happened in a school in Maharashtra, where shocking details have come to light, where as many as 22 girls from classes 6 to classes 10 have come out and claimed that they have been sexually assaulted and molested by the school kitchen helper. Now, POSCO case has been registered against the accused, but here's the shocking aspect, viewers. The man who has been at the center of this sordid saga of sexual assault is a history cheater. That's right. Ganpat Gavil is someone who was already arrested in a POSCO case in 2024. His suspension was later revoked. And believe it or not, he was posted to another tribal boarding school in 2 years, once again leaving several minor girls at his mercy. And that's exactly what has happened. 22 girls have come forward with allegations of molestation, with chilling testimonies, including claims that the alleged misconduct continued for a month and that earlier complaints were ignored. So the question is not just what happened now. It's why a man previously arrested in a POSCO case was allowed back into school in the first place. Listen in to some of these reactions.
3: 21-22 vidyarthini jo hai ashram shala mein Shahpur mein unke sath is tarike ki ghatna hoti hai aur ye aropi jo hai Ganpat Gavli ye pehle bhi aise hi ek mamle mein arrest ho chuka hai but fir se uski ashram shala mein appointment kyu hui aur jahan par mahila vidyarthini hai wahan par uski appointment kaise hui.
4: महिला विद्यार्थिनी तो सर हमारे यहाँ पर हर एक प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र में एक स्कूल गर्ल लोगों का स्कूल है और बाकी तो सब मिक्स मतलब स्टूडेंट बच्चे भी होते हैं और लड़कियां भी होती है तो ऐसा मिक्स वहाँ पर थे. 10वीं तक वो स्कूल थी और 2024 में भी यह घटना हुई थी उसके साथ तो उस टाइम उसको भी सस्पेंशन की ऑर्डर दी गई थी. फिर बाद में उनको रीइंस्टेट किया गया तो अभी उसके ऊपर से कड़क मतलब कार्रवाई करके उसको अगले बहुत कड़क मतलब शिक्षा देने वाले हैं डिपार्टमेंट की तरफ से.
3: बट सर ये दूसरी बार घटना होने का हमने वेट क्यों किया
4: सर? अभी तो ऊपर के मतलब हम लोगों ने हमारा जो ATC ऑफिस है वहाँ पर तो ये सब बातें वहाँ पर भी भेज दी गई थी तो वहाँ से मतलब आना चाहिए थी तो ऐसा जो कुछ कार्रवाई करने का जो अधिकार है वह PO लेवल पर है तो PO ने उस समय उनके तेरी जो थी ये घटना है और जो कुछ कार्रवाई करनी थी वो कर चुके थे और बाद में और ऐसा उनको एक बार दिया गया होगा कि भाई इस घटना से थोड़ा सा सुरक्षा लेंगे या फिर ऐसी घटना नहीं हो दोबारा ऐसी प्रिकॉशन लेंगे लेकिन वैसा उनके साथ नहीं मतलब नहीं किया गया तो फिर से ये घटना हुई उनके हाथों से तो अभी उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हमारे जो कमिश्नर ऑफिस के लोग हैं वो भी करने वाले.
5: 23rd of August को जो शिकायत करता है वो अपने आश्रम स्कूल जो टेम्बा में है वहां पर खाना खाने के बाद जो थाली वगैरह रहती है वो धोने के लिए जा रही थी तब वहीं पर काम करने वाला जो आरोपी है जो वहां पर खाना परोसने का काम करता है वो वहीं से जा रहा था तो उसने जो शिकायत करता है उसके हाथ को और पीठ के ऊपर हाथ फहराया. इसके कारण जो शिकायत करता है उसके मन में लज्जा उत्पन्न हुई. इसका विनय भंग का गुना उस दिन दाखिल है 26 अगस्त को. 26 अगस्त को ही आरोपी को हमने अरेस्ट किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई उसमें शुरू है.
3: सर पहली विद्यार्थिनी के कंप्लेन करने के बाद कुछ और विद्यार्थिनियां यानी कुछ 21 और महिला विद्यार्थी सामने आए.
5: जो पहले शिकायत करता थी उसके कंप्लेंट करने के तुरंत ही बाद जब FIR रजिस्टर हुई उसमें भी वो रिकॉर्ड है कि टोटल 21 और शिकायत करता है लेडीज है जो 18 साल से कम उम्र की है, उन्होंने भी बताया कि उनके साथ भी विनय भंग का प्रकार हुआ है, जैसे हाथ फहराना या उनके मन में लज्जा उत्पन्न होने जैसी कृति हुई है। इसके पहले भी उसी आरोपी के ऊपर एक शाहपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 99/2024 सेम विनय भंग का ही प्रकार हुआ था, उसमें भी गुना दाखिल था, उसमें भी आरोपी को अरेस्ट किया गया था।
2: Well, we don't want to leave you with news of doom and gloom coming in from Maharashtra. So here's some positive news coming in from Maharashtra. 47-year-old woman decided to run a marathon barefoot and win it. Why? Because she needed the cash prize for the education of her daughters. So here's a heartwarming story from Bede. On the other side of a short break, we'll bring you news from for the hearing impaired, and after that, a special roundtable with the Business Today team on the state of Indian economy. Take a look first at this report.
6: This video of Ramabai Ranveer is viral. The 47-year-old ran a marathon in Bede to fund her daughter's education. Ramabai, who ran the race barefooted in a sari, left youngsters behind to come first. She won a cash prize of 3,000 rupees.
7: Ani maji ashi jiddha hoti ki mala te bakshis jinkaycha hota. Mi jya veles dhavat hote tya veles majhya mulincha bhavishya majhya dolyasamor disat hota. Je mi te bakshis ghetle त्या बक्षिसातून माझ्या मुलीला पुस्तकं आणि वह्या पेनी.
8: आणि आई हिम्मतवाली आहे आणि आम्हाला हरू देत नाही. आईला शिक्षणाची आवड आहे म्हणून आम्हाला शिकवते. छंद आहे म्हणजे पोलीस बनण्याचं स्वप्न होतं माझं. मग मी पोलीस बनण्यासाठी माझ्या गावातली 2-3 मुली लागले तिथं, मला तिनं पत्ता दिला. मी आधी शेतामध्ये काम करत गेली.
6: Ramabai has enrolled her elder daughter in a coaching academy in Ambajogai. She works as a cook in the same academy.
9: त्यांना पण मी म्हटलं की तुम्ही इथं जर स्वयंपाक वगैरे करू शकत असाल तर मग त्या स्वयंपाकाच्या मिळणाऱ्या वेतनातून आणि याच्यातून तुमची उपजीविका भागवायला पण मदत होईल.
6: One of Ramabai's daughters is preparing for banking exams. The other daughter, Pooja, is training for police recruitment. Her tireless efforts to educate her daughter has won her praise on the social media. Vidrohi Das, Lahudas Hatagle, Bureau Report, India Today.
1: You are watching India Today.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: जीरो सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: Delhi is staring at a breathing crisis. We've talked about the problem. We've tried to look away, but not anymore. Because what if we told you, you can be part of the solution? India Today brings pollution ka solution.

0: जमीन पर अगर आप किसी से बात करो तो आप सामान्य जन तो छोड़ दीजिए, कोठियों में रहने वाले रोज करोड़ रुपया खर्च करने वाले भी कह रहे हैं कि हालत खराब है। तो अब या तो जनता को नहीं मालूम है क्या हो रहा है, या सरकार ऐसी दुनिया में जी रही है जो वास्तविकता में नहीं है। ये मुझे दो कनेक्शंस साथ होते हुए दिख नहीं रहे।
1: डिस्पाइट ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स, इंडिया इज दी ओनली इकोनॉमी जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है और जहां ग्रोथ भी हो रही है, जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं। इसीलिए शायद से राहुल गांधी और उनका ग्लोबल इकोसिस्टम, जो भारत को एक कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में देखना चाहता था, आज वो निराश है। ये पूरे निराशावादी इकोसिस्टम को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में इंडियन इकॉनमी ने, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने, इंडियन लेबरर्स ने भारत की इकॉनमी को वापस से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी विद 7.8% ग्रोथ रेट बनाया है।

0: जमीन पर अगर आप किसी से बात करो तो आप सामान्य जन तो छोड़ दीजिए, कोठियों में रहने वाले रोज करोड़ रुपया खर्च करने वाले भी कह रहे हैं कि हालत खराब है। तो अब या तो जनता को नहीं मालूम है क्या हो रहा है, या सरकार ऐसी दुनिया में जी रही है जो वास्तविकता में नहीं है। ये मुझे दो कनेक्शंस साथ होते हुए दिख नहीं रहे।
1: डिस्पाइट ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स, इंडिया इज द ओनली इकोनॉमी जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है और जहां ग्रोथ भी हो रही है, जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं। इसीलिए शायद से राहुल गांधी और उनका ग्लोबल इकोसिस्टम, जो भारत को एक कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में देखना चाहता था, आज वो निराश है। ये पूरे निराशावादी इकोसिस्टम को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में इंडियन इकॉनमी ने, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने, इंडियन लेबरर्स ने भारत की इकॉनमी को वापस से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी विद 7.8% ग्रोथ रेट बनाया है।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Welcome back. Big verdict in Punjab ahead of the 2027 assembly elections. BJP's student wing, the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, has won the Punjab University student elections, retaining the president's post for the second consecutive year. Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad's Ankit Bidhan polled over 3,100 votes, defeating the Aam Aadmi Party-backed Adil Brar by about 500 votes. The Congress-backed NSUI candidate finished third. But here's what makes this campus contest politically interesting. The ABVP victory comes after a last-minute support from the Students Organization of India, the student wing of the Shiromani Akali Dal. I quickly want to cut across to Ankit Bidhan, the ABVP candidate who's won the Punjab University students poll as president of the Punjab University. Ankit, welcome. Aapko jeet ki bahut bahut badhai, Ankit. Is jeet ka shrey, is jeet ka credit, aap kisko dete hai? Aapki jeet kaise hui Punjab University ke chunavon mein?
1: ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये पूरे जनजी की जीत है. मैं मेरी जीत का श्रेय जनजी को देता हूँ और जनजी ने साबित कर दिया है कि जनजी के दिल में एबीपी और मोदी जी हैं.
0: अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. यू सेड दिस विक्ट्री बिलोंग्स टू जेन जी एंड देव बैक टू यू. लेकिन अंकित, अगर हम दिल्ली की बात करें तो जेन जी तो यहां सड़कों पर उतरी थी. जिस तरह उन्होंने संसद तक जाने का प्रयास किया, पेपर लीक उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था. तो आपको क्यों लगता है कि जेन जी आपको इस समय सपोर्ट कर रहे थे? किस मुद्दे पर उन्होंने आपको सपोर्ट किया?
1: नहीं, अगर आप कह रहे हैं जो हमारा मैंडेट आया है, तो जैन जी ने साबित कर दिया कि उनके दिल में क्या है, वो किसको प्यार करते हैं, क्या है क्या नहीं है. तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कोई डरा दिया है, कुछ नहीं. उनके जैन जी के दिल में बहुत प्यार है.
0: अच्छा, लेकिन जैसा मैं पूछ रहा था आपसे कि जेन जी के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का है या नौकरी का मुद्दा है, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत सबसे बड़ा चैलेंज नहीं होगा कि किस तरह से इन मुद्दों को और आगे उठाया जाए? और फिर क्या आप अपनी जीत, ये जो लास्ट मिनट अलायंस हुआ है शिरोमणि अकाली दल के स्टूडेंट विंग के साथ, आपको क्या लगता है कि ये एक तरह से टेस्ट बेड है आगे इस तरह की यूनिटी के लिए?
1: अगर आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो अभी जो पंजाब में पेपर लीक हुए थे, तो सबसे पहला प्रोटेस्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन एबीपी थी. उसमें मैं खुद भी था, चाहे हमने विधानसभा घेराव किया या फिर हमने उनका जो हरजोत बैंस एजुकेशन मिनिस्टर है उसके घर का घेराव करना हुआ, हमें चोटें भी आई हैं, वाटर कैनन हमारे ऊपर चलाए गए. तो जब भी ऐसी कोई बात आती है पेपर लीक की, सबसे पहले प्रोटेस्ट करने वाला संगठन हमारा संगठन होता है. अगर हम बात करें सोई पार्टी की, तो जो यूनिवर्सिटी में मैनिफेस्टो हमने बनाया था उसके ऊपर सोई पार्टी ने अपनी सहमति दिखाई और अपना समर्थन हमें दिया, और एक हिंदू सिख भाईचारे की ये मिसाल कायम होकर आगे आया.
0: अच्छा, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हिंदू सिख भाईचारे की मिसाल है छात्र राजनीति में भी. लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर क्या यही एका एक बार फिर दिख सकता है पंजाब में? आपको किस तरह की सुगबुगाहट नजर आ रही है? कैन द बीजेपी एंड द शिरोमणि अकाली दल, यू नो, वाज दिस द टेस्ट बेड? विल दे कम टुगेदर?
1: ये भविष्य के गर्भ में है, जो पंजाब की यूनिट है वो ये चीज तय करेगी.
0: ठीक ठीक. अच्छा, ये बताइए आपकी अब प्रायोरिटी क्या है कैंपस पर, क्योंकि कैंपस में नशे की भी एक बड़ी बात है. कैंपस में ही नहीं, पूरे पंजाब में एक बड़ा खतरा है. तो आपके लिए मेन इश्यूज क्या होंगे अब?
1: वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट हम इस बार की प्रायोरिटी रख के चल रहे हैं. रक्षाबंधन पर मैंने एक प्रॉमिस किया था कि कैंपस के अंदर 24/7 ई रिक्शा अवेलेबल रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मेरी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी लड़कियां, उनके लिए.
0: ठीक.
1: और अगर बात करें हमारा जो मैनिफेस्टो हम लेकर आए हैं, उसके अंदर चाहे पीयू ऐप हम लेकर आए हैं, चाहे नॉन जेआरएफ स्कॉलर्स उनके लिए एटलीस्ट 20,000 स्टाइपन हमने रखवाया है, और भी बहुत सारी चीजें हम लेकर आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारी चीजें हमारी हैं. तो जो हमारा मैनिफेस्टो है उसे हम 100% कम्प्लीट करवा कर देंगे.
0: ठीक. अंकित, आप मेरे साथ जुड़े इंडिया फर्स्ट पर, बहुत बहुत धन्यवाद. सो दिस इज अ ग्लिम्प्स. Is this a glimpse of what we may see in Punjab in times ahead? That's a story we'll be tracking very closely. But that is all I have time for you on India First this evening. Many thanks for watching. News and updates continue on India Today. Stay tuned.

0: Okay, let's turn from there to a Chak De moment of sorts for Indian hockey at the FIH World Cup. Guess what? For the first time this weekend, the Indian women's team finished higher than the men's team at the World Cup hockey. The men came in eighth. The women came in a creditable fifth, their best ever showing since the first World Cup they participated in 1974. So it is a bit of a breakthrough moment for the Indian women's hockey team, which is why we've got three players from that team who've done the country proud. Vice captain Navneet Kaur, she was the highest scorer at the World Cup. Former captain and goalkeeper Savita Punia, who has played more than 300 times for India. And forward, Lalrem Siami, who's been recently conferred with the Arjuna Award. I will start with you, Lalrem Siami, because you're among the youngest players. Arjuna Award milta hai, you finish fifth at the World Cup. Kuch log kahenge, where is the medal? We did not get a medal. Kyon aap hockey players ko la rahi hai? Tell us how you're feeling, finishing fifth, defeating Germany. Kaise lag raha hai, Lalrem? How do you feel?
1: Namaste, sir. हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा कि हम एज ए टीम हमने डिसाइड किया था कि इस बार हमें वर्ल्ड कप में हम मेडल लेकर जाने हैं, कि कोई भी मेडल है तो वो हमारा टारगेट था. बट हमने वो जो हमने एज ए टीम हमने डिसाइड किया वो पहुंच नहीं पाया. बट हमने फिफ्थ फिनिश किया है एज ए टीम. हमारा परफॉर्मेंस भी कॉन्फिडेंस भी हुआ है कि हमें बहुत अच्छा लगा. हमने 52 ईयर्स के बाद हमने ये अचीव किया.
0: But you're still waiting for the medal because you missed it out in the Tokyo Olympics. You came fourth, is bar fifth. Are we confident next time Olympics ya World Cup we will get a medal?
1: Yes, sir, sure. इस बार भी तो पूरा कॉन्फिडेंस था हमें. जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हम मैच खेली थी, थोड़ा सा उसमें हम अपना बेस नहीं खेला. बट एज अ टीम हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा. सो उसी टाइम हम थोड़ा सा हमारा बेस डे था, उस वजह से हम सेमी पहुंच नहीं पाया. बट हमने एज अ टीम में डिसाइड किया कि जर्मन टीम में तो जैसे भी होगा हम जीत के ही हमें बाहर निकलना है, हमें फिफ्थ पे फिनिश करना है. सो एज अ टीम हमने जो डिसाइड किया हमने वो अचीव किया, वो बहुत बड़ा बात है. सो ऑफकोर्स सर, नेक्स्ट टाइम वो पूरा कॉन्फिडेंस है.
0: Well, finishing fifth is creditable given the level of competition. But Savita Punia, not easy to win a medal at the Olympics. Bahut bada competition hota hai. You only lost one match. Ek hi game aap haare Netherlands ke samne. You beat Germany, which is ranked higher than you. Par phir bhi wo kahin na kahin hoga ki medal kab milega. We fell short, as I said, in the Olympics, finished fourth. Fifth is very creditable, but abhi tak wo medal nahin mil raha hai. कहाँ हम चूक रहे हैं?
2: बिल्कुल सर, डेफिनेटली वो मेडल हम भी उतना ही मिस कर रहे हैं, क्योंकि काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं उस मेडल के लिए. और इंडिविजुअल और एज ए टीम अपने आप को जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में फोर्थ आए, बट हमें पता था उस मेडल के लिए हमने कितना मेहनत किया है. और आज ये बोल सकते हैं कि जो हमारा नया कोचिंग स्टाफ आया है, शूट के साथ साथ बाकी जो हमारे कोचिंग स्टाफ है, 6 महीने में अगर टीम ने ये प्रोग्रेस किया है कि हम टॉप 5 में आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है. थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, बट नेक्स्ट वर्ल्ड कप और एलए के लिए आई थिंक हमारी टीम डेफिनेटली मेडल के लिए रेडी होगी.
0: यू नो, यू हैव प्लेड 360 कितने 316 बार इंडिया के लिए खेली है आप. कभी यू आर द मैराथन वुमन ऑफ इंडियन हॉकी, बार बार आप इतने सालों से खेल रही है. कभी कोई जब तक मेडल ना मिले मुझे लगता है आप छोड़ना नहीं चाहेंगी.
2: डेफिनेटली क्योंकि हर एक एथलीट का यही सपना रहता है सर, कि आप मेहनत करते हो तो आपका जो गोल है आप उसके लिए लास्ट तक लड़ें. और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी टीम ने मुझे बहुत बार वो रियलाइज कराया है कि हम मेडल के काफी क्लोज हैं. वो मोटिवेशन रहता है कि अभी और करना है.
0: यू नो नवनीत कौर, यू आर द स्टैंड आउट प्लेयर फॉर इंडिया इन द लास्ट 12 months, बेस्ट प्लेयर ऑफ द हॉकी इंडिया लीग, बेस्ट प्लेयर एट FIH वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. क्या आपको लगता है फिनिशिंग अहेड ऑफ द मेन्स टीम, जिस तरह से फिफ्थ आए, जर्मनी को हराया, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि हो सके बाई 2028 ओलंपिक्स हम वुमेन्स हॉकी में पहली बार मेडल लेकर आए?
3: जी हाँ जी सर बिल्कुल हमारी टीम ने काफी इम्प्रूव किया है पिछले 7-8 महीने में. हमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है जितने भी टूर्नामेंट खेले हैं और वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम बहुत अच्छा खेलकर आई है. ऑफ कोर्स कि हमने जो सोचा था कि हम मेडल लेके आएंगे हम उससे रह गए, बट जो हमारी परफॉर्मेंस थी हमने जितनी भी टीमों के साथ खेले हैं सब हमसे हायर रैंक टीम्स थी या हम उनके साथ ड्रॉ खेले हैं. लास्ट मैच जर्मनी को भी बीट किया है हमने, तो ऑफ कोर्स कि हमें लगता है कि हमारे अंदर वो बिलीव आ चुका है टीम में कि हाँ हम किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं. तो ऑफ कोर्स कि अब जो एक सपना है कि ओलंपिक का मेडल लेना हमने वो हमें अचीव होता हुआ दिख रहा है.
0: And you can watch that full interview with our hockey players on India Today's digital platform. Okay, let me turn and end the show tonight with a very special story. A mother's determination to secure a better future for her daughters has now gone viral. 47-year-old Ramabai Ranveer from Maharashtra's Bid district ran a marathon barefoot in a sari, competing against much younger runners. She finished first, 1 rupees 3,000, which she now plans to use for her daughter's education. This is a story that gives you hope, that will inspire many people. I want to leave you, therefore, with tonight's inspirational story. Remember, this was the news without the noise. Thanks for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubhratri. Jai Hind, Namaskar. Take a look at the Marathon Woman.
4: This video of Ramabai Ranveer is viral. The 47-year-old ran a marathon in Bid to fund her daughter's education. Ramabai, who ran the race barefooted in a sari, left youngsters behind to come first. She won a cash prize of 3,000 rupees.
5: आणि माझी अशी जिद्द होती की मला ते बक्षीस जिंकायचं होतं. मी ज्यावेळेस धावत होते त्यावेळेस माझ्या मुलींचं भविष्य माझ्या डोळ्यासमोर दिसत होतं. ते मी ते बक्षीस घेतलं, त्या बक्षिसातून माझ्या मुलीला पुस्तकं आणि वह्या पेनी.
6: आणि आई हिम्मतवाली आहे आणि आम्हाला हरू देत नाही. आईला शिक्षणाची आवड आहे म्हणून आम्हाला शिकवते. छंद आहे म्हणजे पोलीस बनण्याचं स्वप्न होतं माझं. मग मी पोलीस बनण्यासाठी माझ्या गावातली 2-3 मुली लागल्या तिथं, मला तिनं पत्ता दिला. मी आधी शेतामध्ये काम करत गेले.
4: Ramabai has enrolled her elder daughter in a coaching academy in Ambajogai. She works as a cook in the same academy.
7: त्यांना पण मी म्हटलं की तुम्ही इथं जर स्वयंपाक वगैरे करू शकत असाल तर मग त्या स्वयंपाकाच्या मिळणाऱ्या वेतनातून आणि याच्यातून तुमची उपजीविका भागवायला पण मदत होईल.
4: One of Ramabai's daughters is preparing for banking exams. The other daughter, Pooja, is training for police recruitment. Her tireless efforts to educate her daughter has won her praise on the social media. Vidrohi Das, Lahudas Hatagle, Bureau Report, India Today.
8: You are entering the India Today studio, presented by LIC.

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Every story finds a place. Every voice gets a platform. Every side has its say. Your channel for every headline. Prime Team on India Today, India's only democratic newsroom.
1: जमीन पर अगर आप किसी से बात करो तो आप सामान्य जन तो छोड़ दीजिए, कोठियों में रहने वाले, रोज करोड़ रुपया खर्च करने वाले भी कह रहे हैं कि हालत खराब है। तो अब या तो जनता को नहीं मालूम है क्या हो रहा है, या सरकार ऐसी दुनिया में जी रही है जो वास्तविकता में नहीं है। ये मुझे दो कनेक्शन साथ होते हुए दिख नहीं रहे।
2: डिस्पाइट ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स, इंडिया इज द ओनली इकोनॉमी जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है और जहां ग्रोथ भी हो रही है, जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं। इसीलिए शायद से राहुल गांधी और उनका ग्लोबल इकोसिस्टम, जो भारत को एक कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में देखना चाहता था, आज वो निराश है। ये पूरे निराशावादी इकोसिस्टम को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में इंडियन इकॉनमी ने, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने, इंडियन लेबरर्स ने भारत की इकॉनमी को वापस से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी विद 7.8% ग्रोथ रेट बनाया है।

0: Hello and welcome. You're watching In the Club. I am Susan. What happens when two cops see justice through completely different eyes? Starring Kareena Kapoor Khan and Prithviraj Sukumaran's Daira explores this clash through a gripping investigative thriller inspired by true events. As a shocking crime sparks nationwide outrage, two contrasting approaches to law and justice collide, raising difficult questions about duty, punishment, and the system itself. Take a look.
1: बताता हूँ क्यों लाया इधर।
2: ये तीसरी बार है ना आप और डीसीपी रमन कुमार ने इससे पहले भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन फेस की है।
1: एक्यूज़ ने मौका ढूंढा और एस्केप करने की कोशिश की।
2: क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान
1: उन्होंने हमारे टीम पर अटैक किया
2: और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया।
3: ये एक प्लांट पुलिस एनकाउंटर था।
4: What happens when two officers wear the same uniform but see justice through completely different eyes?
5: Accused दो साल से इसी रूट पर था।
2: दो साल, 600 किलोमीटर और रोकने वाला कोई नहीं।
6: ऐसे केसेस में 100 में से 99 बार लड़की घर वापस आ जाती है सर।
1: और वो एक बार फिर से एक फैमिली ने अपनी बेटी खोई है। फिर से
4: Meghna Gulzar's Daira explores this question through a gripping investigative crime thriller that brings Kareena Kapoor Khan and Prithviraj Sukumaran together as two senior police officers caught on opposite sides of a complex
7: case.
2: It
8: may get slippery, Raman.
1: Tell me what you did to your mother.
4: Inspired by true events, the film unfolds in the aftermath of a shocking crime scene that sparks nationwide outrage.
1: Unki story over hai.
9: Kaha over? Court kachehri ke chakkar, hamara vakil, unka vakil. Abhi to shuruaat hai.
4: What follows is a chain of events and two investigations that force the officers to confront difficult questions about law, duty, justice and punishment.
1: Escape karne ki koshish ki.
2: क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान
1: उन्होंने हमारे टीम पर अटैक किया
2: और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया।
3: सर क्या ये एक प्लांट पुलिस एनकाउंटर था?
4: करीना प्लेज डीसीपी अजूनी कोहली व्हाइल पृथ्वीराज पोर्ट्रेज डीसीपी रमन कुमार।
6: घर वापस आ जाती है सर
1: और वो एक बार
4: ऑल्दो बोथ सर्व द सेम सिस्टम देयर कंट्रास्टिंग अप्रोचेस टू जस्टिस सून पुट देम एट ऑड्स।
2: 17 साल का होने वाला था 4 महीने बाद।
8: इट मे गेट स्लिपरी रमन।
1: बताना अपनी माँ को क्या किया तुम्हें।
4: इंटरेस्टिंगली Daira also brings the complicated issue of juvenile justice into focus.
1: एक अक्यूज तो पतली गली से निकल गया।
2: वो पतली गली नहीं, juvenile protection law है।
1: Juvenile जो rape और murder कर सकता है, उसकी protection।
4: Releasing on September 18, the film features an ensemble cast including Jitendra Joshi, Shiti Jog, Kawaljeet Singh, Sandeep Kulkarni and Trupti Khamkar. Kareena Kapoor Khan was last seen in the action thriller Singham Again, which released on November 1st, 2024.
10: कलयुग है अपनी कलयुग, इस बार रावण जीतेगा।
2: सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती।

0: दुनिया में हर जगह परेशानी है बिकॉज ऑफ गल्फ क्राइसिस, वॉर, हॉर्मुज की समस्या, तेल का आवागमन बाधित है, फिर भी भारत कहां है और बाकी लोग कहां हैं। तो आज मैं बहुत अभिनंदन करता हूं भारत के इकोनॉमिक मैनेजमेंट का, मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, समझदारी और उनकी लीडरशिप का, पूरे वित्त विभाग के प्रबंधन का, वित्त मंत्री जी का, सबों का अभिनंदन और देश का जो मनोबल रहा है।
1: जीडीपी कैसा बढ़ेगा मोदी को दिखता है, मोदी का चश्मा क्या है वो देखना पड़ेगा। मोदी कौन से चश्मे से देखते हैं? मोदी का अर्थशास्त्री है, मोदी का मनमोहन सिंह है, मोदी का पंडित नरसिंह राव है, आप मुझे बताइए। अगर जीडीपी बढ़ गया है तो महंगाई कैसी बढ़ रही है, रुपया कैसा नीचे गिर रहा है 89 रुपये तक, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, 85 करोड़ 85 करोड़ लोगों को 10 किलो मुफ्त राशन में क्यों जीना पड़ रहा है, उसका जवाब भी देना चाहिए ना। जीडीपी बढ़ा दिखना तो चाहिए ना, क्या बढ़ गया हो।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Okay, let's turn from there to a Chak De moment of sorts for Indian hockey at the FIH World Cup. Guess what? For the first time this weekend, the Indian women's team finished higher than the men's team at the World Cup hockey. The men came in eighth. The women came in a creditable fifth, their best ever showing since the first World Cup they participated in 1974. So it is a bit of a breakthrough moment for the Indian women's hockey team, which is why we've got three players from that team who've done the country proud. Vice captain Navneet Kaur, she was the highest scorer at the World Cup. Former captain and goalkeeper Savita Punia, who has played more than 300 times for India. And forward, Lalrem Siami, who's been recently conferred with the Arjun Award. I will start with you, Lalrem Siami, because you're among the youngest players. Arjun Award milta hai, you finish fifth at the World Cup. Kuch log kahenge, where is the medal? We did not get a medal. Kyon aap hockey players ko la rahi hai? Tell us how you're feeling, finishing fifth, defeating Germany. Kaise lag raha hai, Lalrem? How do you feel?
1: नमस्ते सर. हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा कि हम एज ए टीम हमने डिसाइड किया था कि इस बार हमें वर्ल्ड कप में हम मेडल लेकर जाने हैं, कि कोई भी मेडल है तो वो हमारा टारगेट था. बट हमने वो जो हमने एज ए टीम हमने डिसाइड किया वो पहुंच नहीं पाया. बट हमने फिफ्थ फिनिश किया है एज ए टीम. हमारा परफॉर्मेंस भी, कॉन्फिडेंस भी हुआ है कि हमें बहुत अच्छा लगा. हमने 52 इयर्स के बाद हमने ये अचीव किया.
0: बट यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द मेडल बिकॉज यू मिस्ड इट आउट इन द टोक्यो ओलंपिक्स. यू केम फोर्थ, इस बार फिफ्थ. अभी कॉन्फिडेंट नेक्स्ट टाइम ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप वी विल गेट अ मेडल?
1: Yes, sir, sure. इस बार भी तो पूरा कॉन्फिडेंस था हमें. जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हम मैच खेली थी, थोड़ा सा उसमें हम अपना बेस नहीं खेला. बट एज अ टीम हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा. सो उसी टाइम हम थोड़ा सा हमारा बेड डे था, उस वजह से हम सेमी पहुंच नहीं पाया. बट हमने एज अ टीम में डिसाइड किया कि जर्मन टीम में तो जैसे भी होगा हम जीत के ही हमें बाहर निकलना है, हमें फिफ्थ पे फिनिश करना है. सो एज अ टीम हमने जो डिसाइड किया हमने वो अचीव किया, वो बहुत बड़ा बात है. सो ऑफ कोर्स सर, नेक्स्ट टाइम वो पूरा कॉन्फिडेंस है.
0: Well, finishing fifth is creditable given the level of competition. But Savita Punia, not easy to win a medal at the Olympics. बहुत बड़ा competition होता है. You only lost one match, एक ही game आप हारे Netherlands के सामने. You beat Germany, which is ranked higher than you. पर फिर भी वो कहीं ना कहीं होगा कि medal कब मिलेगा? We fell short, as I said, in the Olympics. Finished fourth. Fifth is very creditable, पर अभी तक वो medal नहीं मिल रहा है. कहाँ हम चूक रहे हैं?
2: बिल्कुल सर, डेफिनेटली वो मेडल हम भी उतना ही मिस कर रहे हैं, क्योंकि काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं उस मेडल के लिए. और इंडिविजुअल और एज ए टीम अपने आप को जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में फोर्थ आए, बट हमें पता था उस मेडल के लिए हमने कितना मेहनत किया है. और आज ये बोल सकते हैं कि जो हमारा नया कोचिंग स्टाफ आया है, शूट के साथ साथ बाकी जो हमारे कोचिंग स्टाफ है, 6 महीने में अगर टीम ने ये प्रोग्रेस किया है कि हम टॉप 5 में आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है. थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, बट नेक्स्ट वर्ल्ड कप और एलए के लिए आई थिंक हमारी टीम डेफिनेटली मेडल के लिए रेडी होगी.
0: यू नो, यू हैव प्लेड 360 कितने 316 बार इंडिया के लिए खेली है आप. कभी यू आर द मैराथन वुमन ऑफ इंडियन हॉकी. बार बार आप इतने सालों से खेल रही है, कभी कोई जब तक मेडल ना मिले मुझे लगता है आप छोड़ना नहीं चाहेंगी.
2: डेफिनेटली क्योंकि हर एक एथलीट का यही सपना रहता है सर, कि आप मेहनत करते हो तो आपका जो गोल है आप उसके लिए लास्ट तक लड़ें. और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी टीम ने मुझे बहुत बार वो रियलाइज कराया है कि हम मेडल के काफी क्लोज हैं. वो मोटिवेशन रहता है कि अभी और करना है.
0: यू नो नवनीत कौर, you are the standout player for India in the last 12 months. Best player of the Hockey India League, best player at FIH World Cup qualifiers. क्या आपको लगता है finishing ahead of the men's team, जिस तरह से fifth आए, Germany को हराया, ये turning point हो सकता है कि हो सके by 2028 Olympics हम women's hockey में पहली बार medal लेकर आए?
3: जी हाँ जी सर, बिल्कुल. हमारी टीम ने काफी इम्प्रूव किया है पिछले 7-8 महीने में. हमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है जितने भी टूर्नामेंट खेले हैं, और वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम बहुत अच्छा खेलकर आई है. अफकोर्स कि हमने जो सोचा था कि हम मेडल लेके आएंगे हम उससे रह गए, बट जो हमारी परफॉर्मेंस थी, हमने जितनी भी टीमों के साथ खेले हैं सब हमसे हायर रैंक टीम्स थी, या हम उनके साथ ड्रॉ खेले हैं, लास्ट मैच जर्मनी को भी बीट किया है हमने, तो अफकोर्स कि हमें लगता है कि हमारे अंदर वो बिलीव आ चुका है टीम में कि हाँ हम किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं. तो अफकोर्स कि अब जो एक सपना है कि ओलंपिक का मेडल लेना हमने, वो हमें अचीव होता हुआ दिख रहा है.
0: And you can watch that full interview with our hockey players on India Today's digital platform. Okay, let me turn and end the show tonight with a very special story. A mother's determination to secure a better future for her daughters has now gone viral. 47-year-old Ramabai Ranveer from Maharashtra's Bid district ran a marathon barefoot in a sari, competing against much younger runners. She finished first, 1 rupees 3,000, which she now plans to use for her daughter's education. This is a story that gives you hope, that will inspire many people. I want to leave you, therefore, with tonight's inspirational story. Remember, this was the news without the noise. Thanks for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubhratri. Jai Hind, Namaskar. Take a look at the Marathon Woman.
4: This video of Ramabai Ranveer is viral. The 47-year-old ran a marathon in Bid to fund her daughter's education. Ramabai, who ran the race barefooted in a sari, left youngsters behind to come first. She won a cash prize of 3,000 rupees.
5: आणि माझी अशी जिद्द होती की मला ते बक्षीस जिंकायचं होतं. मी ज्या वेळेस धावत होते त्यावेळेस माझ्या मुलींचं भविष्य माझ्या डोळ्यासमोर दिसत होतं. ते मी ते बक्षीस घेतलं, त्या बक्षिसातून माझ्या मुलीला पुस्तकं आणि वह्या पेनी.
6: आणि आई हिम्मतवाली आहे आणि आम्हाला हारू देत नाही. आईला शिक्षणाची आवड आहे म्हणून आम्हाला शिकवते. छंद आहे म्हणजे पोलीस बनण्याचं स्वप्न होतं माझं. मग मी पोलीस बनण्यासाठी माझ्या गावातली 2-3 मुली लागल्या तिथं, मला तिनं पत्ता दिला. मी आधी शेतामध्ये काम करत गेली.
4: Ramabai has enrolled her elder daughter in a coaching academy in Ambajogai. She works as a cook in the same academy.
7: त्यांना पण मी म्हटलं की तुम्ही इथं जर स्वयंपाक वगैरे करू शकत असाल तर मग त्या स्वयंपाकाच्या मिळणाऱ्या वेतनातून आणि याच्यातून तुमची उपजीविका भागवायला पण मदत होईल.
4: One of Ramabai's daughters is preparing for banking exams. The other daughter, Pooja, is training for police recruitment. Her tireless efforts to educate her daughter has won her praise on the social media. Vidrohi Das, Lahudas Hatagle, Bureau Report, India Today.

0: Welcome back. Big verdict in Punjab ahead of the 2027 assembly elections. BJP's student wing, the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, has won the Punjab University student elections, retaining the president's post for the second consecutive year. Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad's Ankit Bidhan polled over 3,100 votes, defeating the Aam Aadmi Party-backed Adil Brar by about 500 votes. The Congress-backed NSUI candidate finished third. But here's what makes this campus contest politically interesting. The ABVP victory comes after a last-minute support from the Students' Organization of India, the student wing of the Shiromani Akali Dal. I quickly want to cut across to Ankit Bidhan, the ABVP candidate who's won the Punjab University students poll as president of the Punjab University. Ankit, welcome. Aapko jeet ki bahut badhai, Ankit. Is jeet ka shrey, is jeet ka credit aap kisko dete hai? Aapki jeet kaise hui Punjab University ke chunavon mein?
1: ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये पूरे जैन जी की जीत है. मैं मेरी जीत का श्रेय जैन जी को देता हूँ और जैन जी ने साबित कर दिया है कि जैन जी के दिल में एबीपी और मोदी जी हैं.
0: अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. यू सेड दिस विक्ट्री बिलोंग्स टू जैन जी एंड देव बैक टू यू. लेकिन अंकित, अगर हम दिल्ली की बात करें तो जैन जी तो यहाँ सड़कों पर उतरी थी, जिस तरह उन्होंने संसद तक जाने का प्रयास किया. पेपर लीक उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था. तो आपको क्यों लगता है कि जैन जी आपको इस समय सपोर्ट कर रहे थे? किस मुद्दे पर उन्होंने आपको सपोर्ट किया?
1: नहीं, अगर आप कह रहे जो हमारा मैंडेट आया है, तो जैन जी ने साबित कर दिया कि उनके दिल में क्या है, वो किसको प्यार करते हैं, क्या है क्या नहीं है. तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कोई डरा दिया है, कुछ नहीं. उनके जैन जी के दिल में बहुत प्यार है.
0: अच्छा, लेकिन जैसा मैं पूछ रहा था आपसे कि जैन जी के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का है या नौकरी का मुद्दा है, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत सबसे बड़ा चैलेंज नहीं होगा कि किस तरह से इन मुद्दों को और आगे उठाया जाए? और फिर क्या आप अपनी जीत, ये जो लास्ट मिनट अलायंस हुआ है शिरोमणि अकाली दल के स्टूडेंट विंग के साथ, आपको क्या लगता है कि ये एक तरह से टेस्ट बेड है आगे इस तरह की यूनिटी के लिए?
1: अगर आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो अभी जो पंजाब में पेपर लीक हुए थे, तो सबसे पहला प्रोटेस्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन एबीपी थी. उसमें मैं खुद भी था. चाहे हमने विधानसभा घेराव किया या फिर हमने उनका जो हरजोत बैंस एजुकेशन मिनिस्टर है उसके घर का घेराव करना हुआ, हमें चोटें भी आई हैं, वाटर कैनन हमारे ऊपर चलाए गए. तो जब भी ऐसी कोई बात आती है पेपर लीक की, सबसे पहले प्रोटेस्ट करने वाला संगठन हमारा संगठन होता है. अगर हम बात करें सोई पार्टी की, तो जो यूनिवर्सिटी में मैनिफेस्टो हमने बनाया था उसके ऊपर सोई पार्टी ने अपनी सहमति दिखाई और अपना समर्थन हमें दिया और एक हिंदू सिख भाईचारे की ये मिसाल कायम होकर आगे आया.
0: अच्छा, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हिंदू सिख भाईचारे की मिसाल है छात्र राजनीति में भी. लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर क्या यही एका एक बार फिर दिख सकता है पंजाब में? आपको किस तरह की सुगबुगाहट नजर आ रही है? कैन द बीजेपी एंड द शिरोमणि अकाली दल, यू नो, वाज दिस द टेस्ट बेड, विल दे कम टुगेदर?
1: ये भविष्य के गर्भ में है. जो पंजाब की यूनिट है वो ये चीज तय करेगी.
0: ठीक ठीक. अच्छा, ये बताइए आपकी अब प्रायोरिटी क्या है कैंपस पर, क्योंकि कैंपस में नशे की भी एक बड़ी बात है. कैंपस में ही नहीं, पूरे पंजाब में एक बड़ा खतरा है. तो आपके लिए मेन इश्यूज क्या होंगे अब?
1: वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट हम इस बार की प्रायोरिटी रख के चल रहे हैं. रक्षाबंधन पर मैंने एक प्रॉमिस किया था कि कैंपस के अंदर 24/7 ई रिक्शा अवेलेबल रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मेरी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी लड़कियां, उनके लिए.
0: ठीक.
1: और अगर बात करें हमारा जो मैनिफेस्टो हम लेकर आए हैं, उसके अंदर चाहे पीयू ऐप हम लेकर आए हैं, चाहे नॉन जेआरएस स्कॉलर्स है उनके लिए एटलीस्ट 20,000 स्टाइपेंड हमने रखवाया है, और भी बहुत सारी चीजें हम लेकर आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारी चीजें हमारी हैं. तो जो हमारा मैनिफेस्टो है उसे हम 100% कम्प्लीट करवा कर देंगे.
0: ठीक. अंकित, आप मेरे साथ जुड़े इंडिया फर्स्ट पर, बहुत बहुत धन्यवाद. सो दिस इज अ ग्लिम्प्स. Is this a glimpse of what we may see in Punjab in times ahead? That's a story we'll be tracking very closely. But that is all I have time for you on India First this evening. Many thanks for watching. News and updates continue on India Today. Stay tuned.

0: दुनिया में हर जगह परेशानी है बिकॉज ऑफ गल्फ क्राइसिस, वॉर, हॉर्मुज की समस्या, तेल का आवागमन बाधित है, फिर भी भारत कहां है और बाकी लोग कहां हैं। तो आज मैं बहुत अभिनंदन करता हूं भारत के इकोनॉमिक मैनेजमेंट का, मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, समझदारी और उनकी लीडरशिप का, पूरे वित्त विभाग के प्रबंधन का, वित्त मंत्री जी का, सबों का अभिनंदन और देश का जो मनोबल रहा है।
1: जीडीपी कैसा बढ़ेगा मोदी को दिखता है, मोदी का चश्मा क्या है वो देखना पड़ेगा। मोदी कौन से चश्मे से देखते हैं? मोदी का अर्थशास्त्री है, मोदी का मनमोहन सिंह है, मोदी का पंडित नरसिंह राव है, आप मुझे बताइए। अगर जीडीपी बढ़ गया है तो महंगाई कैसी बढ़ रही है, रुपया कैसा नीचे गिर रहा है 89 रुपये तक, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, 85 करोड़ 85 करोड़ लोगों को 10 किलो मुफ्त राशन में क्यों जीना पड़ रहा है, उसका जवाब भी देना चाहिए ना। जीडीपी बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, दिखना तो चाहिए ना क्या बढ़ जाए हो।

0: Okay, let's turn from there to a Chak De moment of sorts for Indian hockey at the FIH World Cup. Guess what? For the first time this weekend, the Indian women's team finished higher than the men's team at the World Cup hockey. The men came in eighth. The women came in a creditable fifth, their best ever showing since the first World Cup they participated in 1974. So it is a bit of a breakthrough moment for the Indian women's hockey team, which is why we've got three players from that team who've done the country proud. Vice captain Navneet Kaur, she was the highest scorer at the World Cup. Former captain and goalkeeper Savita Punia, who has played more than 300 times for India. And forward, Lalrem Siami, who's been recently conferred with the Arjuna Award. I will start with you, Lalrem Siami, because you're among the youngest players. Arjuna Award milta hai, you finish fifth at the World Cup. Kuch log kahenge, where is the medal? We did not get a medal. Kyon aap hockey players ko la rahi hai? Tell us how you're feeling, finishing fifth, defeating Germany. Kaise lag raha hai, Lalrem? How do you feel?
1: Namaste, sir. हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा कि हम एज ए टीम हमने डिसाइड किया था कि इस बार हमें वर्ल्ड कप में हम मेडल लेकर जाने हैं, कि कोई भी मेडल है तो वो हमारा टारगेट था. बट हमने वो जो हमने एज ए टीम हमने डिसाइड किया वो पहुंच नहीं पाया, बट हमने फिफ्थ फिनिश किया है. एज ए टीम हमारा परफॉर्मेंस भी कॉन्फिडेंस भी हुआ है कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमने 52 ईयर्स के बाद हमने ये अचीव किया है.
0: But you're still waiting for the medal because you missed it out in the Tokyo Olympics. You came fourth, is bar fifth. Are we confident next time Olympics ya World Cup, we will get a medal?
1: Yes, sir, sure. इस बार भी तो पूरा confidence था हमें. जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हम मैच खेली थी, थोड़ा सा उसमें हम अपना बेस नहीं खेला, but as a team हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा. सो उसी टाइम हम थोड़ा सा हमारा बेड डे था, उस वजह से हम सेमी पहुंच नहीं पाया. बट हमने एज ए टीम में डिसाइड किया कि जर्मन टीम में तो जैसे भी होगा हम जीत के ही हमें बाहर निकलना है, हमें फिफ्थ पे फिनिश करना है. सो एज ए टीम हमने जो डिसाइड किया हमने वो अचीव किया, वो बहुत बड़ा बात है. सो ऑफ कोर्स सर, नेक्स्ट टाइम वो पूरा कॉन्फिडेंस है.
0: वेल, फिनिशिंग फिफ्थ इज क्रेडिटेबल गिवन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन. बट सविता पूनिया, नॉट ईजी to win a medal at the Olympics. बहुत बड़ा competition होता है. You only lost one match, एक ही game आप हारे Netherlands के सामने. You beat Germany, which is ranked higher than you. पर फिर भी वो कहीं ना कहीं होगा कि medal कब मिलेगा. We fell short, as I said, in the Olympics, finished fourth. Fifth is very creditable, पर अभी तक वो medal नहीं मिल रहा है. कहाँ हम चूक रहे हैं?
2: बिल्कुल सर, डेफिनेटली वो मेडल हम भी उतना ही मिस कर रहे हैं, क्योंकि काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं उस मेडल के लिए. और इंडिविजुअल और एज ए टीम अपने आप को जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में फोर्थ आए, बट हमें पता था उस मेडल के लिए हमने कितना मेहनत किया है. और आज ये बोल सकते हैं कि जो हमारा नया कोचिंग स्टाफ आया है, शूट के साथ साथ बाकी जो हमारे कोचिंग स्टाफ है, 6 महीने में अगर टीम ने ये प्रोग्रेस किया है कि हम टॉप 5 में आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है. थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, बट नेक्स्ट वर्ल्ड कप और एलए के लिए आई थिंक हमारी टीम डेफिनेटली मेडल के लिए रेडी होगी.
0: यू नो, यू हैव प्लेड 360 कितने 316 बार इंडिया के लिए खेली है आप. कभी यू आर द मैराथन वुमन ऑफ इंडियन हॉकी, बार बार आप इतने सालों से खेल रही है. कभी कोई जब तक मेडल ना मिले मुझे लगता है आप छोड़ना नहीं चाहेंगी.
2: डेफिनेटली क्योंकि हर एक एथलीट का यही सपना रहता है सर, कि आप मेहनत करते हो तो आपका जो गोल है आप उसके लिए लास्ट तक लड़ें. और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी टीम ने मुझे बहुत बार वो रियलाइज कराया है कि हम मेडल के काफी क्लोज हैं. वो मोटिवेशन रहता है कि अभी और करना है.
0: यू नो नवनीत कौर, यू आर द स्टैंड आउट प्लेयर फॉर इंडिया इन द लास्ट 12 मंथ्स, बेस्ट प्लेयर ऑफ द हॉकी इंडिया लीग, बेस्ट प्लेयर एट FIH वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. क्या आपको लगता है फिनिशिंग अहेड ऑफ द मेंस टीम, जिस तरह से फिफ्थ आए, जर्मनी को हराया, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि हो सके बाय 2028 ओलंपिक्स हम विमेन्स हॉकी में पहली बार मेडल लेकर आए?
3: जी हाँ जी सर, बिल्कुल. हमारी टीम ने काफी इम्प्रूव किया है पिछले 7-8 महीने में. हमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है जितने भी टूर्नामेंट खेले हैं, और वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम बहुत अच्छा खेलकर आई है. अफकोर्स कि हमने जो सोचा था कि हम मेडल लेके आएंगे हम उससे रह गए, बट जो हमारी परफॉर्मेंस थी, हमने जितनी भी टीमों के साथ खेले हैं सब हमसे हायर रैंक टीम्स थी, या हम उनके साथ ड्रॉ खेले हैं, लास्ट मैच जर्मनी को भी बीट किया है हमने, तो अफकोर्स कि हमें लगता है कि हमारे अंदर वो बिलीव आ चुका है टीम में कि हाँ हम किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं. तो अफकोर्स कि अब जो एक सपना है कि ओलंपिक का मेडल लेना हमने, वो हमें अचीव होता हुआ दिख रहा है.
0: And you can watch that full interview with our hockey players on India Today's digital platform. Okay, let me turn and end the show tonight with a very special story. A mother's determination to secure a better future for her daughters has now gone viral. 47-year-old Ramabai Ranveer from Maharashtra's Bid district ran a marathon barefoot in a sari, competing against much younger runners. She finished first, ₹1,003,000, which she now plans to use for her daughter's education. This is a story that gives you hope, that will inspire many people. I want to leave you, therefore, with tonight's inspirational story. Remember, this was the news without the noise. Thanks for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubhratri. Jai Hind, Namaskar. Take a look at the Marathon Woman.
4: The video of Ramabai Ranveer is viral. The 47-year-old ran a marathon in Bid to fund her daughter's education. Ramabai, who ran the race barefooted in a sari, left youngsters behind to come first. She won a cash prize of ₹3,000.
5: Ani maji ashi jiddh hoti ki mala te bakshis jinkaycha hota. Mi jya veles dhavat hote tya veles majhya mulincha bhavishya majhya dolyasamor disat hota. Mi te bakshis ghetlo. त्या बक्षिसातून माझ्या मुलीला पुस्तकं आणि वह्या पेनी.
6: आणि आई हिम्मतवाली आहे आणि आम्हाला हारू देत नाही. आईला शिक्षणाची आवड आहे म्हणून आम्हाला शिकवते. छंद आहे म्हणजे पोलीस बनण्याचं स्वप्न होतं माझं. मग मी पोलीस बनण्यासाठी माझ्या गावातली 2-3 मुली लागल्या तिथं, मला तिनं पत्ता दिला. मी आधी शेतामध्ये काम करत गेली.
4: Ramabai has enrolled her elder daughter in a coaching academy in Ambajogai. She works as a cook in the same academy.
7: त्यांना पण मी म्हटलं की तुम्ही इथं जर स्वयंपाक वगैरे करू शकत असाल तर मग त्या स्वयंपाकाच्या मिळणाऱ्या वेतनातून आणि याच्यातून तुमची उपजीविका भागवायला पण मदत होईल.
4: One of Ramabai's daughters is preparing for banking exams. The other daughter, Pooja, is training for police recruitment. Her tireless efforts to educate her daughter has won her praise on the social media. Vidrohi Das, Lahudas Hatagle, Bureau Report, India Today.

0: Welcome back. Big verdict in Punjab ahead of the 2027 assembly elections. BJP's student wing, the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, has won the Punjab University student elections, retaining the president's post for the second consecutive year. Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad's Ankit Bidhan polled over 3,100 votes, defeating the Aam Aadmi Party-backed Adil Brar by about 500 votes. The Congress-backed NSUI candidate finished third. But here's what makes this campus contest politically interesting. The ABVP victory comes after a last-minute support from the Students' Organization of India, the student wing of the Shiromani Akali Dal. I quickly want to cut across to Ankit Bidhan, the ABVP candidate who's won the Punjab University students poll as president of the Punjab University. Ankit, welcome. Aapko jeet ki bahut badhai, Ankit. Is jeet ka shrey, is jeet ka credit, aap kisko dete hain? Aapki jeet kaise hui Punjab University ke chunavon mein?
1: ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये पूरे जनजी की जीत है. मैं मेरी जीत का श्रेय जनजी को देता हूँ और जनजी ने साबित कर दिया है कि जनजी के दिल में एबीपी और मोदी जी हैं.
0: अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. यू सेड दिस विक्ट्री बिलोंग्स टू जेन जी एंड देव बैक्ड यू. लेकिन अंकित, अगर हम दिल्ली की बात करें तो जेन जी तो यहाँ सड़कों पर उतरी थी. जिस तरह उन्होंने संसद तक जाने का प्रयास किया, पेपर लीक उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था. तो आपको क्यों लगता है कि जेन जी आपको इस समय सपोर्ट कर रहे थे? किस मुद्दे पर उन्होंने आपको सपोर्ट किया?
1: नहीं, अगर आप कह रहे हैं जो हमारा मैंडेट आया है तो जैन जी ने साबित कर दिया कि उनके दिल में क्या है, वो किसको प्यार करते हैं, क्या है क्या नहीं है. तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कोई डरा दिया है, कुछ नहीं. उनके जैन जी के दिल में बहुत प्यार है.
0: अच्छा, लेकिन जैसा मैं पूछ रहा था आपसे कि जेन जी के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का है या नौकरी का मुद्दा है, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं. तो आपके लिए भी ये बहुत सबसे बड़ा चैलेंज नहीं होगा कि किस तरह से इन मुद्दों को और आगे उठाया जाए? और फिर क्या आप अपनी जीत, ये जो लास्ट मिनट अलायंस हुआ है शिरोमणि अकाली दल के स्टूडेंट विंग के साथ, आपको क्या लगता है कि ये एक तरह से टेस्ट बेड है आगे इस तरह की यूनिटी के लिए?
1: अगर आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं तो अभी जो पंजाब में पेपर लीक हुए थे तो सबसे पहला प्रोटेस्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन एबीपी थी. उसमें मैं खुद भी था, चाहे हमने विधानसभा घेराव किया या फिर हमने उनका जो हरजोत बैंस एजुकेशन मिनिस्टर है उसके घर का घेराव करना हुआ, हमें चोटें भी आई हैं, वाटर कैनन हमारे ऊपर चलाए गए. तो जब भी ऐसी कोई बात आती है पेपर लीक की, सबसे पहले प्रोटेस्ट करने वाला संगठन हमारा संगठन होता है. अगर हम बात करें सोई पार्टी की, तो जो यूनिवर्सिटी में मैनिफेस्टो हमने बनाया था उसके ऊपर सोई पार्टी ने अपनी सहमति दिखाई और अपना समर्थन हमें दिया और एक हिंदू सिख भाईचारे की ये मिसाल कायम होकर आगे आया.
0: अच्छा, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हिंदू सिख भाईचारे की मिसाल है छात्र राजनीति में भी. लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर क्या यही एका एक बार फिर दिख सकता है पंजाब में? आपको किस तरह की सुगबुगाहट नजर आ रही है? कैन द बीजेपी एंड द शिरोमणि अकाली दल, यू नो, वाज दिस द टेस्ट बेड, विल दे कम टुगेदर?
1: ये भविष्य के गर्भ में है, जो पंजाब की यूनिट है वो ये चीज तय करेगी.
0: ठीक ठीक. अच्छा, ये बताइए आपकी अब प्रायोरिटी क्या है कैंपस पर, क्योंकि कैंपस में नशे की भी एक बड़ी बात है. कैंपस में ही नहीं, पूरे पंजाब में एक बड़ा खतरा है. तो आपके लिए मेन इश्यूज क्या होंगे अब?
1: वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट हम इस बार की प्रायोरिटी रख के चल रहे हैं. रक्षाबंधन पर मैंने एक प्रॉमिस किया था कि कैंपस के अंदर 24/7 ई रिक्शा अवेलेबल रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मेरी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी लड़कियां, उनके लिए.
0: ठीक.
1: और अगर बात करें हमारा जो मैनिफेस्टो हम लेकर आए हैं उसके अंदर, चाहे पीयू ऐप हम लेकर आए हैं, चाहे नॉन जेआरएफ स्कॉलर्स उनके लिए एटलीस्ट 20,000 स्टाइपेंड हमने रखवाया है, और भी बहुत सारी चीजें हम लेकर आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारी चीजें हमारी हैं. तो जो हमारा मैनिफेस्टो है उसे हम 100% कम्प्लीट करवा कर देंगे.
0: ठीक. अंकित, आप मेरे साथ जुड़े इंडिया फर्स्ट पर, बहुत बहुत धन्यवाद. सो दिस इज अ ग्लिम्प्स. Is this a glimpse of what we may see in Punjab in times ahead? That's a story we'll be tracking very closely. But that is all I have time for you on India First this evening. Many thanks for watching. News and updates continue on India Today.

0: दुनिया में हर जगह परेशानी है बिकॉज ऑफ गल्फ क्राइसिस, वॉर, हॉर्मुज की समस्या, तेल का आवागमन बाधित है, फिर भी भारत कहां है और बाकी लोग कहां हैं। तो आज मैं बहुत अभिनंदन करता हूं भारत के इकोनॉमिक मैनेजमेंट का, मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, समझदारी और उनकी लीडरशिप का, पूरे वित्त विभाग के प्रबंधन का, वित्त मंत्री जी का, सबों का अभिनंदन और देश का जो मनोबल रहा है।
1: जीडीपी कैसा बढ़ेगा मोदी को दिखता है, मोदी का चश्मा क्या है वो देखना पड़ेगा। मोदी कौन से चश्मे से देखते हैं? मोदी का अर्थशास्त्री है, मोदी का मनमोहन सिंह है, मोदी का पंडित नरसिंह राव है, आप मुझे बताइए। अगर जीडीपी बढ़ गया है तो महंगाई कैसी बढ़ रही है, रुपया कैसा नीचे गिर रहा है 89 रुपी तक, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, 85 करोड़ 85 करोड़ लोगों को 10 किलो मुफ्त राशन में क्यों जीना पड़ रहा है, उसका जवाब भी देना चाहिए ना। जीडीपी बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, दिखना तो चाहिए ना क्या बढ़ जाए हो।

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: Okay, let's turn from there to a Chak De moment of sorts for Indian hockey at the FIH World Cup. Guess what? For the first time this weekend, the Indian women's team finished higher than the men's team at the World Cup hockey. The men came in eighth. The women came in a creditable fifth, their best ever showing since the first World Cup they participated in 1974. So it is a bit of a breakthrough moment for the Indian women's hockey team, which is why we've got three players from that team who've done the country proud. Vice captain Navneet Kaur, she was the highest scorer at the World Cup. Former captain and goalkeeper Savita Punia, who has played more than 300 times for India. And forward Lalrem Siami, who's been recently conferred with the Arjuna Award. I will start with you, Lalrem Siami, because you're among the youngest players. Arjuna Award milta hai, you finish fifth at the World Cup. Kuch log kahenge, where is the medal? We did not get a medal. Kyon aap hockey players ko la rahi hai? Tell us how you're feeling, finishing fifth, defeating Germany. Kaise lag raha hai, Lalrem? How do you feel?
2: Namaste, sir. हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा कि हम एज ए टीम हमने डिसाइड किया था कि इस बार हमें वर्ल्ड कप में हम मेडल लेकर जाने हैं, कि कोई भी मेडल है तो वो हमारा टारगेट था. बट हमने वो जो हमने एज ए टीम हमने डिसाइड किया वो पहुंच नहीं पाया. बट हमने फिफ्थ फिनिश किया है एज ए टीम. हमारा परफॉर्मेंस भी कॉन्फिडेंस भी हुआ है कि हमें बहुत अच्छा लगा. हमने 52 ईयर्स के बाद हमने ये अचीव किया.
1: But you're still waiting for the medal because you missed it out in the Tokyo Olympics. You came fourth, is bar fifth. Are we confident next time Olympics ya World Cup we will get a medal?
2: Yes, sir, sure. इस बार भी तो पूरा कॉन्फिडेंस था हमें. जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हम मैच खेली थी, थोड़ा सा उसमें हम अपना बेस नहीं खेला. बट एज अ टीम हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा. सो उसी टाइम हम थोड़ा सा हमारा बेस डे था, उस वजह से हम सेमी पहुंच नहीं पाया. बट हमने एज अ टीम में डिसाइड किया कि जर्मन टीम में तो जैसे भी होगा हम जीत के ही हमें बाहर निकलना है, हमें फिफ्थ पे फिनिश करना है. सो एज अ टीम हमने जो डिसाइड किया हमने वो अचीव किया, वो बहुत बड़ा बात है. सो ऑफकोर्स सर, नेक्स्ट टाइम वो पूरा कॉन्फिडेंस है.
1: Well, finishing fifth is creditable given the level of competition. But Savita Punia, not easy to win a medal at the Olympics. Bahut bada competition hota hai. You only lost one match. Ek hi game aap haare Netherlands ke samne. You beat Germany, which is ranked higher than you. Par phir bhi wo kahin na kahin hoga ki medal kab milega. We fell short, as I said, in the Olympics, finished fourth. Fifth is very creditable, par abhi tak wo medal nahin mil raha hai. कहाँ हम चूक रहे हैं?
3: बिल्कुल सर, डेफिनेटली वो मेडल हम भी उतना ही मिस कर रहे हैं, क्योंकि काफी हार्डवर्क कर रहे हैं उस मेडल के लिए. और इंडिविजुअल और एज ए टीम अपने आप को जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में फोर्थ आए, बट हमें पता था उस मेडल के लिए हमने कितना मेहनत किया है. और आज ये बोल सकते हैं कि जो हमारा नया कोचिंग स्टाफ आया, शूट के साथ साथ बाकी जो हमारे कोचिंग स्टाफ है, 6 महीने में अगर टीम ने ये प्रोग्रेस किया है कि हम टॉप 5 में आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है. थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, बट नेक्स्ट वर्ल्ड कप और एलए के लिए आई थिंक हमारी टीम डेफिनेटली मेडल के लिए रेडी होगी.
1: यू नो, यू हैव प्लेड 360 कितने 316 बार इंडिया के लिए खेली है आप. कभी यू आर द मैराथन वुमन ऑफ इंडियन हॉकी. बार बार आप इतने सालों से खेल रही है, कभी कोई जब तक मेडल ना मिले मुझे लगता है आप छोड़ना नहीं चाहेंगी.
3: डेफिनेटली. क्योंकि हर एक एथलीट का यही सपना रहता है सर, कि आप मेहनत करते हो तो आपका जो गोल है आप उसके लिए लास्ट तक लड़ें. और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी टीम ने मुझे बहुत बार वो रियलाइज कराया है कि हम मेडल के काफी क्लोज हैं. वो मोटिवेशन रहता है कि अभी और करना है.
1: यू नो नवनीत कौर, यू आर द स्टैंड आउट प्लेयर फॉर इंडिया इन द लास्ट 12 मंथ्स. बेस्ट प्लेयर ऑफ द हॉकी इंडिया लीग, बेस्ट प्लेयर एट FIH वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, क्या आपको लगता है फिनिशिंग अहेड ऑफ द मेंस टीम, जिस तरह से फिफ्थ आए, जर्मनी को हराया, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि हो सके बाय 2028 ओलंपिक्स हम विमेन्स हॉकी में पहली बार मेडल लेकर आए?
2: जी हाँ जी सर, बिल्कुल. हमारी टीम ने काफी इम्प्रूव किया है पिछले 7-8 महीने में. हमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है जितने भी टूर्नामेंट खेले हैं, और वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम बहुत अच्छा खेलकर आई है. अफकोर्स कि हमने जो सोचा था कि हम मेडल लेके आएंगे, हम उससे रह गए, बट जो हमारी परफॉर्मेंस थी, हमने जितनी भी टीमों के साथ खेले हैं सब हमसे हायर रैंक टीम्स थी, या हम उनके साथ ड्रॉ खेले हैं, लास्ट मैच जर्मनी को भी बीट किया है हमने, तो अफकोर्स कि हमें लगता है कि हमारे अंदर वो बिलीव आ चुका है टीम में कि हाँ हम किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं. तो अफकोर्स कि अब जो एक सपना है कि ओलंपिक का मेडल लेना, हमने वो हमें अचीव होता हुआ दिख रहा है.
1: And you can watch that full interview with our hockey players on India Today's digital platform. Okay, let me turn and end the show tonight with a very special story. A mother's determination to secure a better future for her daughters has now gone viral. 47-year-old Ramabai Ranveer from Maharashtra's Bid district ran a marathon barefoot in a sari, competing against much younger runners. She finished first, 1 rupees 3,000, which she now plans to use for her daughter's education. This is a story that gives you hope, that will inspire many people. I want to leave you, therefore, with tonight's inspirational story. Remember, this was the news without the noise. Thanks for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubhratri. Jai Hind, Namaskar. Take a look at the Marathon Woman.
4: Video of Ramabai Ranveer is viral. The 47-year-old ran a marathon in Bid to fund her daughter's education. Ramabai, who ran the race barefooted in a sari, left youngsters behind to come first. She won a cash prize of 3,000 rupees.
5: Ani maji ashi jiddo hoti ki mala te bakshis jinkaycho hoto. Mi jyavelas dhavat hote tyavelas majhya mulincha bhavishya majhya dolyasamor disat hoto. Je mi te bakshis ghetle त्या बक्षिसातून माझ्या मुलीला पुस्तकं आणि वह्या पेनी.
6: आणि आई हिम्मतवादी आहे आणि आम्हाला हरू देत नाही. आईला शिक्षणाची आवड आहे म्हणून आम्हाला शिकवते. छंद आहे म्हणजे पोलीस बनण्याचं स्वप्न होतं माझं. मग मी पोलीस बनण्यासाठी माझ्या गावातली 2-3 मुली लागले तिथं, मला तिनं पत्ता दिला. मी आधी शेतामध्ये काम करत गेली.
4: Ramabai has enrolled her elder daughter in a coaching academy in Ambajogai. She works as a cook in the same academy.
7: त्यांना पण मी म्हटलं की तुम्ही इथं जर स्वयंपाक वगैरे करू शकत असाल तर मग त्या स्वयंपाकाच्या मिळणाऱ्या वेतनातून आणि याच्यातून तुमची उपजीविका भागवायला पण मदत होईल.
4: One of Ramabai's daughters is preparing for banking exams. The other daughter, Pooja, is training for police recruitment. Her tireless efforts to educate her daughter has won her praise on the social media. Vidrohi Das, Lahudas Hatagle, Bureau Report, India Today.